जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पेशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशियल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट, व्हेन यू टर्न ऑन द लाइट, डार्कनेस इज गॉन। देयरफॉर लॉर्ड लेट मी बी लाइट इन डार्कनेस, सो दैट आई वेर एवर कम आई मे इन लाइट द हार्ट्स ऑफ अदर्स। धर्म, विदाउट धर्म दिस फ्लावर्स विल नॉट ग्रो, विदाउट दैट धर्म द फ्रूट्स विल नॉट कम। दैट कॉल्ड सनातन धर्म, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड हाउ टू अचीव दैट, अंडरस्टैंड दैट, इज कॉल्ड दया। उस फॉर द दया वी हैव टू फॉलो दैट धर्म, मर्सी। विच धर्म डिड दैट मदर्स फॉलो? दो दे वर सफरिंग बट दे डिडंट गिव अप देयर मर्सी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। एंड द रूट्स ऑफ द सिंस इज ईगो।

बलिहारी उस घट को प्रगट बोले आए. इन एवरी हार्ट गॉड इज ड्वेलिंग, बट माई एडोरेशन टू दैट हार्ट इन विच गॉड स्पीक्स, एंड दैट इज योर वाइज लैंग्वेज, दैट इज योर काइंड लैंग्वेज, दैट्स योर फुल ऑफ लव द वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, नॉट एंगर, नॉट शाउटिंग, नॉट स्क्रीमिंग. स्क्रीमिंग डॉग्स, शाउटिंग राक्षसास, फाइटिंग नेगेटिव एनर्जीज, देवास गुड वन हार्मोनी, देर इज नो फाइट. वी आर लाइक द ओशन, ऑन द सरफेस इज द वेव्स, बॉटम ऑफ द ओशन इज वेरी काम पीसफुल. सो वॉट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड वी कांट स्टॉप वॉट हैपन्ड हैपन्ड, बट डोंट पुट मोर फायर इन इट, फ्यूल इन योर हार्ट एंड इन योर इंटलेक्ट, इन योर माइंड यू शुड हैव लाइक ए बॉटम ऑफ द ओशन पीस एंड कॉम्पैशन. ऑलवेज सेंड ब्लेसिंग्स टू द वर्ल्ड. वी ऑल हैव एबिलिटी टू ब्लेस. व्हेन द चिल्ड्रन गोज टू स्कूल, नाउ वी से बाय बाय, टेक केयर, बी गुड बॉय, बट वी से ब्लेस यू. द ब्लेसिंग शुड बी विथ यू, टेक केयर, नॉट बाय बाय. बाय बाय मीन्स फिनिश्ड, गो गो. एंड आई ब्लेस यू, यू कनेक्टेड योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, एंड ब्लेसिंग हेल्प्स. डजेंट मैटर हु गिव्स यू ब्लेसिंग. And we all have blessings. You say sometimes in your Australian people, when someone makes, you say, bless you. Only that time. Other time we say, bye bye, burden gone. Not like this. So daya, we can do, help everyone. And in this daya, there is one beautiful exercise, techniques we have, and many people are doing here also. In India, if we see the thorns on the way, we will take this thorn and put it away. Or piece of glass, bottles. And here also many people enjoy the beer and they throw the... Or they enjoy the alcohol and then they don't know what they do. They throw the alcohol bottles, glass, broken, splitted pieces of glass. Now we have daya. We carefully collect it and put it away because it can hurt any human, it can hurt animals, the dogs, the birds, many, many, or mouse, many. They don't know there's a glass. They will come on it and they will hurt themselves, pain. This is a beautiful hidden practice of the mercy. When you move the thorns from the path, general path, now it is said, our in religion, Hindus, you did not remove the thorns from the path. You remove the thorns from your future path. That fruits comes to us. Who is hungry, give something to eat. There are some people who poor, sitting somewhere, homeless, and we are walking or driving, and we said, oh, these people, they don't work. They will drink alcohol. Who are you to judge that person that can't work and will drink alcohol? What is bad in the alcohol? The whole country is drinking alcohol and you don't want to let him drink. True? Why?

श्री श्री देव पुरुष महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

दीपनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखरम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम्।

0: ने की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। सब ऋषि मुनि महात्माओं की। मात पिता गुरुदेव की।
1: विश्व गुरु महेश्वरी सतगुरुदेव।

आध्यात्मिक। तनिक लोभ नहीं ऐसा लेसा, एंड दैट सदगुरुदेव डज नॉट हैव एनी ग्रीड। तनिक, तनिक मीन्स नॉट इवन लिटल द हेल्म ऑफ द ग्रास हैवीनेस। सो तनिक मीन नॉट एट ऑल, तनिक लोभा। सो वेन सदगुरु और स्पिरिचुअल पर्सन, मदर और फादर फॉर द चिल्ड्रन, दे विल स्पीक इक्वल फॉर ऑल। दैट इज द बेस्ट वे दैट एवरीवेयर इज इक्वल। मोटों की मर्यादा अटल है, घूम रहा गज जैसा। मोटा मीन्स अ ग्रेट पीपल। नाउ व्हाट इज अ ग्रेट? नॉट सम हाई पोजिशन, द प्रेजिडेंट और द सेक्रेटरी और दिस और दैट एंड दैट। नो नो नो, मोटा मीन्स ऑल्सो नॉट हाई इन हाइट, स्मॉल और बिगर, बट हु इज अ ग्रेट इन, हैव अ ग्रेटनेस इन द हार्ट, इज अ ग्रेट। Forgiveness, never angry, never jealous, never hate, never dividing. That's a motta. That is a Gurudev. Motta ki maryada atal hai. Motta ki maryada atal hai. Sarai, you have to write te, not the day. Chanti. Motta ki maryada अटल है, नॉट अडल। मोटों की मर्यादा अटल है। अटल मीन्स अनमूवेबल। सो द हु इज अ ग्रेट पर्सन लाइक यू ऑल, देन इट इज नेवर चेंजेस, नॉट इवन लिटिल बिट। ग्रेटनेस इज इन यू, माय गॉड। मोटों की मर्यादा, मर्यादा मीन्स बिहेवियर, बिहेवियर। हु डजंट हैव ए सोशल एजुकेशन देन ऑलवेज चेंजिंग, एंग्री, दिस दैट, बट अदर्स गुड वर्ड्स, हम्बलनेस, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, दिस आर द ग्रेटनेस। मोटों की मर्यादा अटल है, घूम रहा गज जैसा। एंड हाउ दे आर वॉकिंग फ्री, निडर, विदाउट फियर। देयर वॉक इज कॉल्ड घूम रहा गज जैसा, लाइक द एलिफेंट इज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और एलिफेंट इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट और एनीवेयर। ही डजंट गो लाइक दिस, ही इज गोइंग पीसफुल, वेरी नाइस। Even the many, many dogs are barking. Is elephant is frightened? He is going peaceful. And he knows the dog will not come near. So great one, great Atma, great Bhaktas like you all, my dear. Yes. So have like such a behavior, such a relations. Jivan mukta param kripalu rakhe na rag dvesha. Jivan mukta param kripalu, that is a jivan mukta. Param Kripalu, the highest, the blessed, the merciful one. Jivan Mukta Param Kripalu. And he is a, Param means the highest, blissful. Mercy, full of the mercy. That is Mahaprabhuji's, Guruji's. We are learning still. One day we will have also mercy.

नारायण भगवान की देवेश्वर महादेव अलखपुरी जी महादेव की सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की सत्य सनातन धर्म ओम शांति शांति शांति।

ॐ कारबिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः।

तम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वद्धि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे अभी गुरुजी महाराज

0: आज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीजें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यत। सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा, कहते हैं ये मूक प्राणी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो। यही आज हमें पूज्य स्वामी जी जो हमें प्रेरणा देते हैं, पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है। मत वो शांति सेवा से मिलती है, तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृदह कस्य स्विदनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कहती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: जितना भी हो आप तो अभी तो घोषणा नहीं कर सकते,

0: plus he's getting a monthly check. Now, if you make a call,
1: take it. So you want me to appeal to my... Okay.
0: In America.
1: Okay.
0: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and?
0: Daily Life Foundation, Austria or India?
1: Okay.
0: India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
0: Foundation.
1: In?
0: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
0: Foundation.
1: In Austria.
0: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that, friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to yoga in daily life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
0: In rupees?
1: Yes.
0: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
0: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, Vishwa Shanti, Nepal ke liye. So Brahma Rishi ji, aaiye aap, and please sing one bhajan. Darad dukh dur ho jaye, daya ho jaye. Misri Lal ji, Brahma Rishi, P. Thawla, Nagore. Catch me there.
2: Nagore. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताई है वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे, बिना सिंह पूछ के जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाख

सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती महाद्वानंद जी महाराज सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है ये जीव आता है ना महाराज इस संसार के अंदर परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र और इतना प्रेम कि महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

करे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहाँ जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी झोली

further. That's it. So don't think that I will be now by my great wife, friend, hello, my dear, oh, my brother, hey, my sister, hey, my father, hey, my ma, or hey, my husband. And they said, no, you are killing, but one day, फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारे वो कटेगी ओ यस दैट्स व्हाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप फ्लावर्स एंड Then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavana udai. Ab ke bichare kab mila. Pata kahan milega, kahan jayega. आज हम हैं सभी साथ में वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टूअर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर जीव पक्षी जाता है वो पक्षी पक्षी रे कहते नहीं हरि ओम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट एंड हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू हरि ओम दीप नारायण भगवान की नाउ द बॉयज कम दे आर कमिंग द स्टूडेंट्स Oh.

0: Come a little back. Thought of. मेरे पीछे आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। और मास्क निकाल दो। स्टार्ट करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदी गम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om.

विदाउट गुरु कृपा वी हैव नो मुक्ति। ओम ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। Who give me joy just like Brahma? Who is statue of knowledge? Who is beyond on duality? Who is just like sky? Who is valley clean? Who is beyond on happiness and sadness? I make pranam that guru. Om brahmanandam param sukhadam kevalam gyanam multim dandvatitam gagana sadisham

0: पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिभाषकाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।